आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी एन्ना हन आदर गैन एक मत एक कथाव एक लड़का एक थी लड़की दीवानी एक पिरमिला मैक एक गहनुला मैक गैन उम्र तो एन हिटिया

말 신들루에 아이 오버 피피 우야나 부라 오는 뒤에 헬로에 아이 두루바 두루카라 विश्व मुसकले ऐ ओब मधु बंदुने पुरा हंदे पोडिकले ऐ ओबले गलनतुरा पेनवा इदिरी पिट सुंदर सुवंद मल इर हंद तारका तबमिन दे पामल पेनवा तुसितेक असिरिय दिव्यतुल दुगतिय मैवुए ऐ ओब दिव्यतुल मुगुरिन तला पोडिकरदा सुवंद पेति सके उनु दियन दवमिन लपलु इते वहरुन रुके ही पन नल यान्नतम अति ओबदुन आदरे दन हुंद ठोम अति चत्रिका दबरेलें ओबदुन आदरे दन हुंद ठोम अति।

सुबमन नरम रहा तरंगा हर लसन तो मगे हिते मगे आदरे वेला इन्ना अने मटे अति तरंगा नवते आ मुनगे हन दकिन्नो अन्ने हितक पपु अग्नति हदवता क्लंग हित त्रिदवीम वितरा इतरु या सतुटेंगे आगे लोके तान पुदे मान न तुआ मामे आवा हदवते तियां आदरे करना मगे न पुरु कुमारया मांग आदरे दरनी अंगलिन चमरी आदरे मुकद केला पिटत केला देना मगे हिते या मगे आदरे वेला इन्ना नवते आओ मुने गहन वद्दा किन्न वद्दो ने नहीं

ये हम आ गए हैं कहाँ कि अन्न कोया माँ में कहे तो देख के ना विके मैं सिहिने नगरे मैं कोकिला ना दे मैं सुलंग रोद पुलुन कैटी वाला मैं सियाल लम ओबे मटे के ना विता है किधर